0: I'm Guru Chris, and this is YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: Dhokadhadi chetavani. Apna kyuni login password ya MF. A. Kabhi saajha na kare. Kripya nimnalikhit baaton ko yaad rakhein. Apne password ya MF. A. कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें। कैंपस और क्यूनी आईटी आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा। यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी एमएफ ए अनुरोध का उत्तर न दें। संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें। यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या एमएफ ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें। यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है।
2: Your college is looking for a DJ. No radio station is complete without DJ, and that could be you. Come talk to us in room 1G06G. Email us at bgraves@york.cuny.edu. Call us at 718-262-5293 or visit our website, ycradio.org. Once again, email us at bgraves@york.cuny.edu. Call us at 718-262-5293 or visit our website, ycradio.org. We'll be looking forward to meeting you. ycradio.org, the voice of today's generation.
3: Where do you want to go to lunch?
4: I'm having a stroke.
3: Did you hear what I said?
4: I'm having a stroke.
3: Why aren't you answering me?
4: I'm having a stroke.
5: When someone is having a stroke, they may not be able to say it with words, but their body language will tell you loud and clear. Look for FAST. F, face drooping. A, arm weakness. S, speech difficulty. T, time to call 911 immediately. Know the sudden signs. Spot a stroke fast. Visit strokeassociation.org. Brought to you by the American Stroke Association and the Ad Council.
6: Savage. Back at it. You listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
7: Is there...